भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया गुरु ग्रंथ साहब अंदर तिलंग राग विच दर्ज है। भगत कबीर जी मनुख नूं उपदेश कर रहे हैं, बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना है। हे बंदे, तू हर रोज़ अपने दिल अपने हिरदे विच उस परमात्मा की भाल कर, ते एवें घबराहट विच ना भटकदा फिर। ये दुनिया एक जादू का तमाशा है, ते जिवें जादू दे तमाशे चों कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा, उसी तरह इस जगत विचों भी तैन कोई चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली। बेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदाए। हे भाई, बेअर्थ बहस करन लई बेदां कितेबां दे हवाले दे के एवें फजूल गल्लां करन नाल दिल दा सहम दूर नहीं हुंदा। तुसी अपने मन नूं पलक भर भी टिका लो तां तुहानूं सभनां विच रब वसदा दिस पएगा। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहें, हक सच खालक खलक म्याने, श्याम मूर्त ना है। बेसमझ लोग दूसरे धर्मां दीआं पुस्तकां पढ़ पढ़ के कि इन्हां विच जो लिखिया है वह झूठ है, खुश हो के बहस कर रहे हैं, पर सदा थिर रहण वाला परमात्मा सभना जीआं विच वस रहा है। ना तो वह सतमें आसमान ते बैठा है, ते ना ही कृष्ण दी मूर्ति विच है, वह तो सर्व व्यापक है। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन भूत, कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। सतमें आसमान विच बैठा समझण दी थां ते हे भाई, ओ प्रभु रूप दरिया तां अंते करन विच लहरां मार रहा है, तू उस विच इशनान करना सी। सो सदा उस दी बंदगी कर, ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख, वो हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का वो करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करां जो उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर, ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनू वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हाथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माहे।

0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना। शमी भाई जी,
1: जी
0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना,

0: वाह
1: लास्ट रह गई लाइन बाबे, तो
0: जी,
1: मैं थोड़ा ही लेना चाहता सी पर ज्यादा लै गया, कोई गल नहीं चलो।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: देख के

0: वाह जी,
1: शमी भाई जी, पहुंच
0: क्या बात
1: भाई
0: है,
1: जी,
0: क्या
1: बहुत
0: बात है
1: खूब,
0: जी।
1: बहुत खूब,
0: जिंदाबाद
1: बहुत खूब,
0: जिंदाबाद जिंदाबाद
1: जिंदाबाद।
0: जी, बहुत ही खूब। ठीक
1: थैंक यू
0: है भाई,
1: मुकद्दर जी,
0: ठीक है
1: बहुत
0: बाबू,
1: बहुत बहुत
0: मेरे को
1: शुक्रिया
0: भी आज समय दी थोड़ी जी दिक्कत सी, पर मैं जिहड़ी
1: जी
0: ओ अमृता प्रीतम वाली है ना, मैं तो रुल गया सी परांदे डोरियां, पर तुसी
1: जी
0: पूरा करता बाबे, थोड़ा बड़ा धन्नवाद हो
1: थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक
0: इकल।
1: यू।
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया बाबे,
1: एक
0: क्या ही
1: एक
0: मता।
1: एक मेरा एक एक मेरा स्पेशल थैंक साडे वालों अपना ओजला बाई जी वास्ते है,
0: जी
1: ते
0: जी
1: उही गल है। चलो ठीक है बाबे, सारे
0: थैंक
1: नु
0: यू
1: सत
0: जी,
1: श्री अकाल
0: थैंक यू,
1: जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: ठीक है
0: हाँ जी दोस्तों, इस
1: जी,
0: जी
1: सत
0: अपने
1: श्री
0: ना
1: अकाल जी।
0: मुकद्दर जी जुड़े से गल्लां बातें करके गए ने, ते छमी पाजी गल्लां बातें आप करते सी रीति रिवाज दियां। ते
1: जी
0: वैसे तो चलो गलबात अगे तोरदे हैं, एडवोकेट राजन सैनी साहब जुड़ गए ने, उन्होंने गलबात नाल, गलबात नाल दी नाल सुन लैंदे हैं, फिर अगे
1: वाह जी
0: चलते
1: वाह,
0: हैं।
1: वाह जी वाह
0: सत श्री अकाल सैनी
1: जी,
0: साहब, स्वागत है जी।
1: भाई साहब सत श्री अकाल, शमी वीर जी सत श्री अकाल, ते श्रोतिया नु भी सत श्री अकाल
0: सत
1: जी।
0: श्री अकाल जी सैनी साहब जी, आनो जी।
1: पहला
0: सत श्री अकाल
1: तो
0: जी,
1: मुकद्दर वीर नु बेन पहला तो मुकद्दर वीर नु बेनती है कि पेपर च भावा ग्रीडी डाओ आया होवे, पर तुसी थर्स्टी करो ही लिखिया करो, जेड़ी चीज
0: जी
1: चेते होवे उ ही सुनानी चाहिदी है।
0: जी
1: क्या बता। जी
0: जी
1: वैसे तो कहते ना एक कवाली दे बोलिया, जा मुड़ जा का जे भी घर मुड़ जा, ए
0: जी
1: इश्के च की रखिया। हां
0: जी
1: जी, इन्हां नूं
0: आहा
1: बेनती है कि
0: आहा
1: रात नूं ये कवाली कवाली जरूर सुन ले,
0: जी
1: तुसी
0: बा
1: लिंक शेयर करो।
0: बाकी
1: हां उन्हां नूं पता है जी,
0: जी
1: सारियां कवालियां सुनिया ही है
0: जी
1: इन्हां ने।
0: बिल्कुल है जी,
1: वाह
0: अब
1: जी वाह,
0: आइए
1: तुहाडे विषय ते,
0: जी
1: रस्मां ते विहार। भाई साहब, जिंदगी जिहड़ी
0: जी
1: आ ये रस्मां तो ही शुरू हुंदी आ ते रस्मां तो ही खत्म हुंदी आ
0: बिल्कुल
1: जी।
0: है जी, पहले रोने तो लैके आखरी रोने तक चलती है जी
1: क्या बात है,
0: जी
1: नहीं जी जिहड़ी
0: बचका था फिर धोने ही रह गए, रोने धोने
1: जी बिल्कुल जी। तुसी देखो
0: जी
1: ना, गुड़ती इड़ा नु दित्ती परसीनी ने, है जी, ओ पहली रसम।
0: जी बिल्कुल
1: तो अगे फिर रस्मां चलदियां रहिंदियां हैगियां जी जिंदगी दे विच, ते फिर आउंदी हैगी आ जी आखरी रस्म, चौथा ते अठाला।
0: जी
1: हां जी, ओ नाल ही अजकल कर दिंदे हैगे फिर,
0: नाल
1: चौथा
0: लगता
1: भी
0: है
1: नाल ही
0: जी,
1: ते नाल ही अठाला।
0: बिल्कुल है जी
1: ते ये जिंदगी दे विच इहदे विच आ जांदियां सारियां, विआह वालियां रस्मां आ जांदियां हैगियां जी, होर खुशियां दियां रस्मां ते गमियां दियां रस्मां।
0: जी
1: हां जी, ते इस करके लाइफ जिहड़ी हैगी है ये रस्मां दी कंबीनेशन ही आ जी,
0: जी
1: होर तो कुछ नहीं।
0: बिल्कुल है जी सैनी साहब, रिवाज दी नाल
1: बाकी
0: नाल सुन
1: पक्की गल
0: तो
1: है सैनी साहब,
0: साढ़े समय ते है
1: जिहड़ी
0: ना।
1: ना
0: हाँ जी, हाँ जी भाजी
1: जी, ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ,
1: ਵਿਆਹ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ,
0: ਜੀ
1: ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਖੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਨੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਦਕਿ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਉਹਨਾਂ ਦਾ
0: ਹੈ
1: ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
0: ਜੀ
1: ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ
0: ਜੀ
1: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
0: ਜੀ
1: ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ,
0: ਹਾਂ ਜੀ
1: ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
0: ਹਾਂ ਜੀ
1: ਚੀਜ਼ਾਂ
0: ਬਿਲ
1: ਪ੍ਰਵੇਲੈਂਟ ਆ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ,
1: ਹਾਂ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਜੀ,
0: ਹੈ
1: ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ,
0: ਜੀ
1: ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ
0: ਜੀ
1: ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ,
0: ਜੀ
1: ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਸਲ ਦੀ ਰਸਮ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, गोदी विच बैठे लाला ताई निहारियो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो।

0: रे तू चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी मिशेश जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली काम्य फल दा हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

0: क्यों मजलूम पर जुल्म कर गर्त में जा गिरता है? समझता है खुदा खुद को, बेजुबा को सताता है। क्यों खोदता है कब्र अपनी, खुद ही कफन अपना सिलता है। गुजरते वर्ष के साथ गुजरता वक्त गुजर जाए, गुजरते वर्ष के साथ गुजरता वक्त गुजर जाए, गुजर गया जो वक्त ना फिर वो लौट कर आए। उठाकर हाथ अपने सजदे में झुकाकर सर अपना, उठाकर हाथ अपने सजदे में झुकाकर सर अपना, दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए। दुआ करो अब के बरस खुशियों भरा हर एक पल आए। धन्यवाद।
1: मैं शर्मा जी तो बाद एक मैं होर कुछ साखी करने का एक साडे शायर ने फिरोजपुर तो कमल दास जी वो भी अपनी एक रचना लेके हाजिर हो रहे ने। कमल दास फिरोजपुर जी थोड़ा दुआबा रेडियो दे हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है जी आया नू।
2: जिंदगी ये कहे गा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी।

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी एक है।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी

0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कुरी वटना। शमी भाई जी
1: जी,
0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कुरी वटना, दिलानू सदा याद ही रहू।

0: वाह
1: लास्ट रह गई लाइन बाबे
0: जी,
1: मैं थोड़ा ही लेना चाहता ज्यादा लै गया कोई गल नहीं चलो
2: बहुत बहुत खूब
1: देख के।